0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4

0: करें, हाफजा तेज करें और खून की कमी को पूरा करें। मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करें। बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात। बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए। खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए। बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे। फालिज के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है। जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345-923-2860।
1: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करदा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील, मुहासे, छाइयां और आंखों के गिर्द स्याह हल्के खत्म करे। आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सन ब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मोजर असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345-923-2860 0300-585-8585।

परियाल मेडिकल स्टोर दे, दरिया चौक बटाग्राम, डॉक्टर बखजादा सराव मिलावी खा, न्यू बटाग्राम फार्मेसी, बिल मुकाबिल खत्म नबूवत चौक, निज इस्लामिया बैंक मेन बाजार बटाग्राम, इनाम सराव मिलावेगी। इसरार और सिलसिले के लिए नो टेंशन बटाग्राम मिलावेगी बा। डी रजियात मनन को शुक्रिया अदा को शमसुल इनाम, शम्स हैदर लेडीज मार्केट, दुकान नंबर 2, नेज जुनेद शूज वाला, जुनेद शूज वाला सर मिलावी की निजदे वर्ष हेल्ता बल्च कम ने मिलावी की बताओ स्टाफ

Welkom weg, jenab. Ja, waar ik heb rond. Welkom, kashamade. De jainu pakher rale. Bilkul, jenab. हम आ चुके हैं आफ्टर दिस सॉन्ग. आई होप आपने ये सॉन्ग एंजॉय किया होगा. प्रोग्राम है जनाब जमा उस्ताद खबर है. थोड़ी सी उर्दू में भी बात करेंगे, थोड़ा सा उर्दू का तड़का भी लगाएंगे प्रोग्राम में. तड़का लगा लूं या नहीं बताए ना. और जितने भी हमारे उर्दू स्पीकर हैं या इनके अलावा जितने भी इनको स्पीकर हैं सबको प्रोग्राम में वेलकम खुश आमदीद. आपका बेहद शुक्रिया जनाब कि आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं और हमें सुन रहे हैं. तो बिल्कुल जनाब, और आपके लिए भी मैं प्रोग्राम में एक अदद इनको सॉन्ग जो है ना वो भी प्रोग्राम में इंक्लूड करूंगा. बिल्कुल जनाब, यही सॉन्ग है नई मजारवी का, जो कि कहते हैं क्या कहते हैं जनाब, चलो कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं. बिल्कुल जनाब है ना. थोड़ी सी इंजॉय कर

0: करते हैं, फिर वापसी करते हैं, ठीक है जी, थोड़ी सी एंजॉय करते हैं, सही है। जितने भी हमारे उर्दू बोलने वाले हैं, हिंदी को बोलने वाले हैं, उनके भी हक बनते हैं ना यार सॉन्ग सुनने का, है ना,
1: कोई गल नहीं,
0: थोड़ी सी उनकी जुबान जो है उसमें भी अगर सॉन्ग प्ले हो जाए तो क्या ही बात है, क्या ही बात,
1: कोई गल नहीं।
0: सिर्फ एक मिनट के लिए सुनते हैं, ठीक है, फिर वापसी करते हैं। वापसी होगी फिर सीधा आपकी कॉल्स होंगी, आपके मैसेजेस होंगे,
1: चल तेरा कोई गल नहीं।
0: हाय हाय हाय,

0: हाँ बिल्कुल जनाब, थोड़ी सी हमने एंजॉय कर लिया है बस पुख्तों की खबरें को सही दवाई दवाई और सीधा कॉल तब तजमा सिंह दोस्तों मैं अवेलेबल आफ्टर सॉन्ग सासु कॉल बालू। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम करो मनी कॉलर। ये लका तो यो कॉल ना बाद वाला संगे मड़ा टिकटॉक है बिल्कुल टिक टॉक लश पश ए वन तो वाया था ना बाबू का ना मड़ा मड़ा तो यो यो काल नवाद राजीनो दा दा दा दा तो बोले किधर रहता हुआ दा सो वाचे दा कना मतलब लगा रोजाना ची इंसान योजे तो कदर कमी कना बारान मौसम बारान शिवे दी कने शिवे खुराक तपूस कुम कम खुराक डेरा मजा कई
1: खुराक
0: मौसम क्यों
1: माँ
0: खुदा मजा न कही कने अरे यख खुदा मजा नहीं यख गर्मा गर्म खुराक ना मजा कही
1: कना
0: हाँ लका मास्ता शुअल दे सरा ज्वारो डोड़े शुआ साग शुअल बाहर मौसम किस पर
1: अचार
0: मजा कुरनी अचार नहीं गंदलो वाला शवल या मोठानो वाला शवल दाडेरा मजा जडे शख्स मालूम
1: कना
0: अस कुरनी जी कमियो खुराक ने दिन टूल जबरदस्ती लगा ऐसा खलक बीमार है की
1: ना
0: ऐसे बारान मौसम की कलक कलक ही ना
1: मड़ा
0: अडे ना मंदिर क्या ना मेडे ना मंदिर को खुशहाल रहता उसे न्यास खुशहाल हो सके पहला ऑफिस आय हाय लंग्स रहो यो काल वाला यो काल नवाज चिराजी बार हल डेरा मंदने को जाने वाले को कौन रोक सकता है कोई भी नहीं ना। बस जहाँ रहे खुश रहे शाद रहे आबाद रहे बल में ऐसे जगह लगाई थी मैडम खबर नहीं बाहर अल्डे मैं ऐसे जगह लगाई थी अजीज द तोरगान नाम

जी ग्रान अर्जुन को सौर्य रेडियो अमन एफ एम अठासी सारी चार बटा ग्राम पर दिन और दुनिया खबर को लमंगा छिप दगा वक की ज्यात जिक्र असकार दे खैर खबरी और दा छिकम दे दा कोल पकार दी जिका दे वक मुड़ी तचिदे फरिश्ती

ओशु गुड अफ्टरनून सिंगन खाना गुलावा ताखु मिही पतन लगी माँ भी चिरता चापो डालर हर्ष के लिए तो हुडीर प अरमान सर रागले ओले चिप जलो ओली छा पजल तो हुडीर परमान सर राले ओली छा पजल दागले इस गुलवेश ना ना गुलवेश दा को खैर सर रमजान मंग सर मखी दा शायरी मा सर अमल दी सर राजा मजा के जी कल कल बाकी शायरी मजा के ना

0: वही सलाम संगीन से वेलकम सिंह आई एम सिद्रा सिद्रा बिल्कुल ठीक ठाक था सुखे सेहत हम खदिम अल्हम्दुलिल्लाह वक्त तेरी गिस्ता सु दुआ
1: कुर्बान शम चिदा कला नदी या कड़ेम कुर्बान शम चिदा कला नदी या कड़ेम
0: हवाई जी अस्सलाम वही सिंह वक्त जी हम द बर्तुनैना और प्रोग्राम डेर खुन के पवल्ला।

बिल्कुल स्ता आर्मी तशोक देनो यकीनन जदे चा आर्मी तशोक दे दे चा पुलिस तशोक देनो अल्लाह पाक बोरला यानी खाम खा चे देनो आगा बोला अल्लाह पाक बोला खुदा दे चे अर कारला यानी मेहनत अजीज तुरगर द सोंग रता प्ले का नो बिल्कुल सोंग बरत हम प्ले को यकीनन चे ग्रानु मिनवालो सोंग रता प्ले का

रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

आवाज बराबर देखने दे बराबर तेरा लगे इन्फॉर्मेशन आ कीजिए सी आवाज बराबर देखने दे बराबर जी सवाल जवाल आवाज उरी की ना उरी जी चार सतवाल आवाज उरी की ना उरी जी दो दखने आवाज तो जी ओके ओके जी आवाज चरत चरत बराबर दे जी इन्फॉर्मेशन मिल प्लीज शाबाश शाबाश शाबाश शाबाश द शुरू यानी द चार शंबे मुबारक हो रसा द स्टूडियो बगड़ो के समाज सरस सरफा सा पग बजी यदि पग मेंट

0: Un seriuse, un seriuse, un seriuse.
1: माँ का दूध हर बच्चे की पहली और बेहतरीन गिज़ा है। ये बच्चे को जरूरी गिज़ायत फराहम करता है, बीमारियों से लड़ने की कुव्वत बढ़ाता है और उसकी सेहतमंद नशोनुमा करता है। पैदाइश से 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और 6 माह के बाद इजाफी गिज़ा के साथ 2 साल तक दूध पिलाना जारी रखें। याद रखें, कोई भी डब्बे का दूध माँ के दूध का नेमल बदल नहीं।
2: और रेडियो अमन, रेडियो अमन आवाज स्तासु आवाज।
3: बरा दावली दास गड़बड़ प्रोतिये हौसले ओड़े दे
4: अंकल जी लकार चे हुकम नो बेदमशम पपाटो औजिसम में दर्द नशी दापो पर सर चे लग नास्ता हुकम नस्तर गिरा बंदे तोरी तोरी कीगी
3: दिलबरा न तमा तने वाए ददे मसाले खो देर आसान हल दे
4: अंकल जी हगस
3: हम उस वर्षा औ द बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर औ जर्नल स्टोर की द ताकत पावर एक्स एनर्जी टैनिक मिलावेगी। पावर एक्स एनर्जी टैनिक हो ख्याल कवा सोक दर लबदल शरबत दर निकली और इख्तिया दहागे पहचान औ नख दादा चिदयो सड़ी तस्वीर पे जोड़ दे औ तेज मंड वही
5: पावर एक्स एनर्जी टॉनिक। पावर एक्स एनर्जी टॉनिक कचरिस्ता सु वजूद कमजोरी भी हर वक्त बेदमाए पमख मुँह तिर सरी भी या दस्तर गुदलान दे तोरे हल्की भी दकीनास्तो नपस उदरे दो सरा स्तरगे तोरे तोरे के दलु लपारा इस्तेमाल करे पावर एक्स एनर्जी टॉनिक स्पेशल दहग माशुमानु दपारा हम फायदा मंदे कुमची वधन कई जल जल की गंदे चिप्सुना और तुरन ये खोलली भी निनुम याद साथ है पावर एक्स एनर्जी टॉनिक मेन डिस्ट्रीब्यूटर मोहसिन शाह ट्रेडर्स जेल मोल बटाग्राम दराबितेश मेरदा 0311-158-7745 बल नंबर दे 0311-84-33-878।
6: अस्सलाम वालेकुम ग्रानु मीना वालो जिम मशाल खान और तासु और रेडियो अमन FM 88.4 बटाग्राम रेडियो अमन और दूडी रडेरा मनना।